यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे। तेरे इश्क में ये दिल कहे अब और कुछ भी ना चाहिए।

0: हामीलाई के हेप्छ डाक्टर ताके तिरा
1: निराश निराश ओके
2: मोबाइल हजुर जान टक्कै यो गरेर यो लिएर जाने ल।

0: हस् त म लाग्छु है।
1: सुल्टिनी भोलि 2 बजे।
0: ए भोलि त म भ्याउँदिन।
1: होइन, भोलि म तिमीलाई माग्न आउँदैछु। तिम्रो बाबा त मान्नुहुन्छ नि?
0: मलाई के थाहा, मनाइहेर्नुहोस्।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 0664 20 670, मोबाइल नम्बर 98 460 56 238।